महाराजनी जय। गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराजनी जय। दिल्ली अक्षरधाम महोत्सवनी जय। जय जय रोजनी जेम आपणे सौ हाथ जोड़ी स्वामी बापानी स्मृति साथे श्लोकनु गान करिए।

दियापजो सुख कंद। सजानंद स्वामी महाराज नी जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज नी जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज नी जय। भगत जी महाराज नी जय। शा